क्यों कहने में रैंकिंग पे को रंग में जगह में जब रंग में जल को मैं रैंक वो रंग में जाने को नहीं टेंडेंस से नुको सेम गने ने मैं रैंक टेंडेंस से वो रंग में जा कुबेन जा लोग सुगा लोगों